कनकभूषणाय नमः ॐ खज्जोताय नमः ॐ लोलिताखिल दैत्याय नमः ॐ सत्यानन्दस्वरूपिणे नमः ॐ अपवर्गप्रदाय नमः ॐ आर्यशरण्याय

सर्वशास्त्र प्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहम्। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं व्यमाग्रजं छाया मातांड संभूतं तन्नमामि शनैश्चरं।

अग्ने अतिर्वर्मनसा गृणान अस्माकं भोज्य विधातनो नाम प्रतनाजिदगुं सहमानमुग्नमग्निगुं भवेम परमास्तदस्तात् सनः पुरुषदधि दुर्गा नविस्वाक्षामद्देव अधिदुरिताच्चग्निः रत्नो च कमेज्यो अध्वरेषु सना च्यहो दानज्ञः सहच्चे।

0: स्पेशलिस्ट लैप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर जी एन दिव्य तेजा सागिराजू MS OBG गायनेक एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन
1: डॉक्टर PDM स्वरूप MD जनरल मेडिसिन
0: डॉक्टर लक्ष्मी चंदना यूरोलॉजिस्ट यूरो गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर जी फणींद्र गिरिनाथ MD पीडियाट्रिक्स
1: डॉक्टर एस पूर्णचंद MD इंटरवेंशनल पल्मोनोलॉजिस्ट एमरजेंसी क्रिटिकल केयर टीम डॉक्टर पी प्रवीण MS ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर माचवरपु महेश MBB